0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लायन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगे। यह यूरोपीय उद्योगपतियों का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की यह पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश

0: ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशिएंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत के जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 12 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन बना सकी। सुनील नारायण को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: आकाशवाणी भूज केंद्र छे प्रस्तुत छे विचार बिंदु विषय दर्पण पठन तन्वी देसाई।

अंगद की बात सुन रावण को क्रोध हो आता है। सामने खड़ा बंदर बाली पुत्र है ये जानकर रावण सकुचाया, किंतु उसे कुलनाशक कहकर उसकी भर्त्सना करते हुए बोला, तू तो अपने कुलरूपी बांस के लिए अग्नि रूप पैदा हुआ है। अपने को एक तपस्वी का दूध बताते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? तेरा पिता कहाँ है और कैसा है वो? अंगद उत्तर देते हैं, कुछ दिनों बाद तुम स्वयं उनके पास जाकर उनका कुशलक्षेम पूछ लेना। सच है मैं कुल नाशक हूँ और तुम कुल रक्षक हो। ऐसी बात तो अंधे और बधिर भी नहीं करते। तुम तो 10 शीश और 20 आंखों वाले हो। अंगद के वचन सुनकर रावण का क्रोध उबल पड़ता है, किंतु उसे अपने नीतिवान और धर्म पालक होने का भ्रम भी है, अतः अपने क्रोध पर काबू पाने का बड़प्पन दिखाता है। अंगद व्यंग्य करते हैं, तुम्हारी धर्मशीलता के बारे में मैंने भी सुना है। तुम्हारी धर्मशीलता का उदाहरण है कि तुमने पराई स्त्री का हरण कर लिया है। अपनी बहन के नाक कान कटे देख धर्म का विचार करके ही तो तुमने क्षमा कर दिया था। बड़े भाग है मेरे जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया।

0: मैं श्रीकांत और वेंकटनाथ शर्मा आप समझ रहा था रामचरित मानस गान प्रसारण आकाशवाणी ना भूज केंद्र पर थी करवामां आव्युं। हवे थोड़ी ज्वार में संस्कृत ना समाचार दिल्ली केंद्र थी रिले करीशुं।
1: आकाशवाणी संपत्ति वार्ता श्रीलंका।

0: भूथेन बोर्गनरेन सम्प्राप्नोति। स्वीडन देशस्य एक दिवसीय यात्रा नवदिल्ली स्टॉकहोमयोः वर्धमान पारस्परिक सम्बन्धेषु ऐतिहासिकः पदक्रमः अस्ति। श्रीमोदी स्वीडन समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय सम्बन्धपरकं सम्भाषणं करिष्यति। सीबीएसई इत्यनेन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा नवम कक्षायाः छात्रेभ्यः भाषात्रयस्य अध्ययनं जुलाई मासस्य प्रथमदिवसात् अनिवार्यं कृतम्। परिषदा विज्ञप्तौ उक्तं यत् 20-2000-तमाब्दीयायाः राष्ट्रिय शिक्षानीतेः 23-2000-तमाब्दीयस्य राष्ट्रिय विद्यालय शिक्षा पाठ्यक्रमस्य अनुसारि एतासु तिस्रषु भाषासु न्यूनातिन्यूनं भाषाद्वयं भारतीय मूलकं भवेत्। भारतीयर्तुविभागेन अद्य अण्डमान निकोबार द्वीप समूहाय पश्चिम बंगाले हिमालयस्य अधोवर्ती क्षेत्रेभ्यः सिक्किमाय च अतिवृष्टिपरा नारंगवर्णकी संचेतना प्रसारिता। केरलमाहे लक्षद्वीप दक्षिणाभ्यन्तरीण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईक्कलेषु उत्तर पूर्वीय क्षेत्रस्य कतिपय भागेषु च समाना एव स्थितिः भविष्यति इत्यपि विभागेन सूचितम्। संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकारं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वन्द्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्टिनाभ्यां स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वन्द्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलं 39 धावनांकैः पराजितम्। अदौ पयं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वन्द्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यते। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूथिंग के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब यूथिंग ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए

0: बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गौतम बुद्ध यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गौथमबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से भरी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए, जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कार्नेटो और जेरल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़ीन को हरा था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कालिका और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

यह कार्यक्रम मनोरंजन 10 वागे जे केंद्रित रहेशे निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरानी पुण्यतिथि निमित्ते 10:45 मिनिटे सांभळशो लोक संगीत।

में 5 मिनट हिंदी फिल्म संगीत में कार्यक्रम गुलमोहर युवा देश तो माटे युवाणी रजू हसे 6:30 ग्रामजनों माटे नो कार्यक्रम गामजो चोरो 7:20 मिनिटे सांभळी शकशो।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में

0: श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
1: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नेदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिसमें वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
3: वी हैव अ वेरी लॉन्ग स्टैंडिंग पार्टनरशिप विद स्वीडन ऑन डिफेंस।
4: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
3: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री बी के शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
5: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का

0: 80 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार

0: देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट के इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। ये पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक है। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आजीकर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजाशेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बनी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ है मुकेश कुमार बल।
2: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी के जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रूली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत मंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 480 चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम के कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो आईपीएल में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 से पंजाब के का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और शाम 7:30 से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
1: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराकाल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
3: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों

0: सफल हुआ है। अब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रहा है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तानी है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के स्वीडन यात्रा पर आज गोथनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिन्दुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Sunil Verma. The headlines. India and the Netherlands elevate their ties to strategic partnership following talks between Prime Minister Narendra Modi and his Dutch counterpart Rob Jetten. Prime Minister Modi to reach Gothenburg today on a 2-day visit to Sweden to hold talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said, India-Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners.
3: हम भारत नीदरलैंड की इस ट्रस्टेड पार्टनरशिप को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बनाने जा रहे हैं। हम ग्रीन हाइड्रोजन में एक महत्वाकांक्षी ज्वाइंट रोड मैप लॉन्च करने जा रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी में हमारे संबंधों को फ्यूचर रेडी बनाने जा रहे हैं। हम दोनों देशों के बीच टैलेंट मोबिलिटी, यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप और ज्वाइंट R&D को भी और सुदृढ़ करने जा रहे हैं। यानी द फ्यूचर ऑफ इंडिया नीदरलैंड पार्टनरशिप इज ब्राइटर देन एवर बिफोर।
2: Highlighting cooperation in sectors such as water management, healthcare and education, Mr. Modi said democratic values, market economy and responsible behavior are part of our common approach, calling for greater collaboration in emerging sectors.

0: नमस्ते
1: स्मिता
0: बोलू छु जी जी एकदम मजा में बहुज गर्मी से
1: हाँ
0: जी हाँ जी
1: गीत
0: संभाली जरूर पसंदगी पूरी कर दीजिए।

0: नमस्कार।
1: ए जिल्ला भावनगर तालुको भावनगर नाम बोले तो बोल दे रहा हूँ।
0: अरे बोलो मकोट भाई क्या चो?
1: एक सोता मित्रों से बातें भाई जा रहे हैं आपके एक बचावी को एक दिक्कत मैं था जी आपके खंडा पड़ा नवा मित्र घूमने में ऐसे
0: देश भाई जी जी
1: आपके शोर फिल्म में भी आपको उसे पानी बता दी जा रहा हूँ कैसा
0: जरूर किसी में भी देश

आकाशवाणी भोज प्रस्तुत छह मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गांधीनगर महानगर पालिका ने 620 करोड़ विकास काम लोकार्पण और खातमुहूर्त करते मधुबरी बीजा अत्याधुनिक प्लांट उद्घाटन करते। मधुबरी कंपनी एसएमएल दोलरा चीप उत्पादन टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स साथ भागीदारी करी। देश में प्रथमवार कच्छना मुंद्रा की 182 करोड़ जेहादी ड्रग्स कैप्टर वन जत्थो मिली आयो। कृषि मंत्री जीतू वाघाणी वर्च्युअल मध्यम से अमदावाद हाट खाते आयोजित केसर केरी महोत्सव 2024 शुभारंभ करायो। नाणा मंत्रालय में नवा जाहिरनामा अनुसार पेट्रोल निकास पर पहली बार प्रति लीटर 3 रूपया विंडफॉल टैक्स लगाया। इंडियन रेडक्रॉस संचालित भूज ब्लड सेंटर ने मिली राष्ट्रीय स्तरीय गुणवत्ता एमएबीएस की मान्यता। सुपार्श्व जनसेवा मंडल और सार्वजनिक दवाखाना ट्रस्ट भूज संयुक्त आयोजन हेठ प्रतिवर्ष मुजब शीतल जलधारा ठंडा पानी पदों ने छास केन्द्र वाणियावाड़ खाते भी आना दवाखाना वर्ष शुरू कराया। जिले में पूर्व कच्छ एनसीबी रामधाम बचाव नेशनल हाईवे पर मादक पदार्थ खानगी होटल में 19 किलो 500 ग्राम पोस्ट में जल्दी फाड़ी ने बे आरोपियों की धरपकड़ करी। आजथी हिंदू पंचांग अनुसार अधिक मास आरंभ। हवामान विभाग अनुसार आगामी 19 तारीख बाद गर्मी में राहत मिली सके। जिला में 25 जून थी 30 जून वे चौमासु पहुंचे ये शक्यता। मुख्य समाचार सांजे 5:10 बजे।

0: 是山苏金龙龙阿兰德龙，阿尼龙龙龙马祖。
1: 一对，阿尼个龙的马祖，我们的美丽家人也是在马兰尼卡尔里，阿尼马祖苏特兰色彩大牌的马祖，他穿了红色的大衣嘛。马兰都是个马斯里奥，阿尼唯一的特卡龙，特殊卡吉雷，不是个马兰阿尼龙龙阿尼，阿尼查西奥皮纳皮吧。
0: 阿尼龙马龙尼阿斯尔加奈，他巴特卡勒，阿尼吉古马巴特卡罗格金哈，他都是个马兰康纳纳桑帕卡罗，古吉拉特卡纳阿克坦 ，GSDNA 的阿拉真吉纳。आउनरमा सुरक्षा सूचनाहरू पालन गरौ अनि लुटी बचो
1: हिटवे अहिलेकै लुटी बचो मकै बेटी चारवटा सुधै बाहिर निक्लनु नै अनि माथो सुत्रो सफेद कापडी भएको तथा खुल्ला कपडा पहिरमा बालको सगर स्त्रीयो अनि बहिनीले तड्काहरू विशेष काळजी लिए पुष्कर पहाडमा पानी लिम्बु पानी अनि छाल सिमा पिना पिवा
0: अनि यो लगाउने असल जना है तात्कालिक नजिकमा प्राथमिक आरोग्य केन्द्र तथा सरकारी दवाखानामा सम्पर्क गर्नु गुजरात सरकारमा उपक्रम जिएसडिएनएद्वारा जनहितमा
2: मनोरंजन कार्यक्रम अंतर्गत आप सभी रहा छो निर्माता निर्देशक प्रकाश मीरानी पुण्यतिथि पर विशेष फिल्मी गीतों दोस्तों एक समय था जारे बॉलीवुड में रोमांस में रंग छवायेला हतो त्यारे प्रकाश मीराए लोकोना दिल में गुस्सो संघर्ष अने स्वाभिमान नी नवी कहानी उतारी अने जन्म थयो एक पात्र नो जेने दुनिया एंग्री यंग मेन नो खिताब आपे छे जंजीर फिल्म की प्रकाश मेहरा अने अमिताभ बच्चन की जोड़ी बॉलीवुड में स्टाइल स्टोरी अने स्टारडम की नवी ऊंचाई आपी और समझिए मन्ना देना स्वर में आ यादगार गीत

लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल दबा लेगा दांतों तले उंगलियां।

आकाशवाणी ने भूज केन्द्र पर ऐसी आप सामने गया था निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा ने पुण्यतिथि पर विशेष फिल्मी गीतों का कार्यक्रम मनोरंजन प्रस्तुत छह लोक संगीत आज ने कार्यक्रम में सामने कलाकार वेलजी भाई गजर ने कंठे गवायल कटिक लोक संगीत रचनाओं

सहारा बनू तुम खुद बेघर बेचारा इतना मुझसे प्यार बना कि मैं एक बादल आवारा कैसे किसी का सहारा बनू कि मैं खुद बेघर बेचारा।

समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है। व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गौतमबुद्ध, स्वीडन।

करने में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है।

तो एक रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह के शुरुआत में भी आरबीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से बढ़े हुए

दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शोभन चोपड़ा। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र

आकाशवाणी समाचार समय पर मार्गदर्शन। सर्वप्रथम मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री पांच देशों की यात्रा दरमियान आज स्वीडन पहुंचे। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह गुजरात में 2 दिवस प्रवास अहमदाबाद खाते मिलियन माइंड टेक पार्क में लोकार्पण कर वस्ती गणतरी 2027 में प्रथम तबक्का हेठ 5 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय कामगिरी शुरू। विश्व आरोग्य संगठन ने कोंगो और युगांडा में फैलायेल इबोला रोगचाला ने आरोग्य कटोकटी जाहिर करी। आगामी 26 मई थी केरल में चौमास में आगमन की शक्यता। समाचार विगतवार।

आकाश महरा ने 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड को कई सुपरहिट फिल्में दी। उनका जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में हुआ था। प्रकाश मेहरा ने अपने करियर की शुरुआत फिल्म उद्योग में प्रोडक्शन से जुड़कर की और बाद में निर्देशन के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बनाई।

नीताश मेहरा को विशेष रूप से अभिनेता अमिताभ बच्चन के साथ उनके सफल जोड़े के लिए जाना जाता है। उन्होंने अमिताभ बच्चन के लेकर कई यादगार फिल्में बनाई, जिनमें जंजीर, मुकद्दर का सिकंदर, नमक हलाल और शराबी प्रमुख है। विशेष रूप से जंजीर में अमिताभ बच्चन को

विकासखाने भारतीय सिनेमा में नई ऊंचाइयां स्थापित की। उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहद लोकप्रिय रहा और आज भी उनके गीत श्रोताओं के बीच पसंद किया जाता है। वे ऐसे फिल्मकार थे जिन्होंने व्यवसाय

उसने 17 मई 2009 को प्रकाश मेहरा का निधन हो गया, लेकिन हिंदी सिनेमा में उनका योगदान आज भी अमूल्य माना जाता है। उनकी बनाई फिल्में और उनका निर्देशन आने वाले पीढ़ियों के फिल्मकारों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। इसके साथ ही आज का गरीब भारतीय कार्यक्रम संपन्न होता है। आज्ञा दीजिए, जय जवान। भारतीय कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी के अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और भूज केंद्रों से किया गया। दो बजकर 15 मिनट पर सुनेंगे दोपहर समाचार।

अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी

0: द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावाद है। आकाशवाणी से बातचीत

सकती है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गौतम बुद्ध, स्वीडन।

संबंधित है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब लेटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रोब लेटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाजों के

0: सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब रुटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडंगो युद्ध में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत मेली हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है।

0: अनुसंधान गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: दाखिल जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। सागरणीय सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। यह सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। सागरणीय सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी सौगण्य प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र के रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नास।
0: भारतीय पुरातत्व

उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द

गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रूपये और गुरुग्राम में 85.08 रूपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रूपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से

उदाहरण की बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त फेयर चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही

इबोला का संकट कोविड-19 जैसी महामारी विश्व नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है।

रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक

भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री नागरिको ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपने नैतिक को और प्रदान कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारिक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में है। कल खंड

0: अच्छा बच्चों, आज हम तुम्हें असमिया भाषा का एक गीत सिखाएंगे। सीखना चाहते हैं ना असमिया भाषा गीत?
1: जी हाँ।
0: अच्छा, ये जो गीत है इसमें अपने देश की मट्टी के प्रति देशवासियों के प्रेम का, प्यार का वर्णन है। तो मैं सिखाऊंगा ये गाना और मेरी मदद करेंगी नलिनी जी साथ। सबसे पहले तुम गीत के बोल लिख लो। ए माती रे,
1: माती रे,
0: ए माती रे, मोरो मोते,
1: मोरो मोते,
0: माती के,
1: माती के,
0: सुमिलो,
1: सुमिलो,
0: माती के सुमिलो। हो गया ना यहाँ तक? आगे लिखो। एई माती ते, एई माती ते जीवन सोबी, जीवन
1: सोबी,
0: जी कैसे जा के नीचे बिंदी लगा लेना है ना, तो जीवन सोबी, आकी आकी,
1: आकी
0: मोसीलो,
1: मोसीलो।
0: अब पहला अंतर आएगा इसके बाद। दूर,
1: दूर
0: आकाहार,
1: हाँ,
0: ये जो ना आका आकाश श को बोलते हैं वहाँ ह की तरह से, तो आकाश ये ह और ह के बीच में आका खार भी नहीं, आका हार भी नहीं, आकाहार, आकाहार लिखो। दूर आकाहार,
1: दूर
0: रोहन, कियोनु,
1: कियोनु,
0: लागे लागे।

0: 再见。
1: 我那那呼哇，混ऐसे बोलना है एक बार और दूसरे那呼哇，दूसरे में ऐसे लंबा कर लेना है।混दो से लो, एक, दो, तीन, चार,

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोफसन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टोफसन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगे। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉप विटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रामी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य

सरकार ने घोषणा की है कि राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलाशय मध्य से सैन्य उपकरणों से लगे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलाशय मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3 दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलाशय मध्य से आवागमन को रोकने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बनाए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।

सीने जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रांतरी ने तीसरा कंडिया बंदरे पहुंचे। विश्व आरोग्य संगठन ने कोंगो और युगांडा में फैलाया इबोला रोगचाला ने आरोग्य कटौती जाहिर करी। इंडियन रेड क्रॉस संचालित भोजना ब्लड सेंटर ने मिली राष्ट्रीय स्तरीय गुणवत्ता में इन्हें देश की मान्यता। सुपरफो जन सेवा ने सार्वजनिक प्रार्थना ट्रस्ट भोजना संयुक्त आयोजन हेठ प्रतिवर्ष मुजब शीतल जल द्वारा ठंडा पानी पर उन्हें छाछ केन्द्र वाणियावर खाते बियाना दवाखाना पास शुरू कराया। राष्ट्रीय धोरीमार्ग तंत्र ट्रैफिक मैनेजमेंट और सलामत मार्ग व्यवस्था ने प्राथमिकता आपसे मित्रा में कच्छ यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्सटेंशन सेंटर शुरू कराशे। आज थी कच्छ यूनिवर्सिटी ना विजुअल आर्ट्स विभाग और कच्छ म्यूजियम ना सजरा उपक्रम में म्यूजियम विजुअल आर्ट्स वारसा ना संस्कृति ने समर्पित कला विधि कार्यक्रम का प्रारंभ। हवामान विभाग ने जनवरी अनुसार आगामी 19 तारीख बाद गर्मी में राहत मिली सके। आगामी 24 मई थी करोना चौमासा ना आगमन की शक्यता। जिला 25 जून थी 30 जून वच्चे चौमासु पहुंचे तेवी शक्यता। अभी पछीना मुख्य समाचार सांजे 7:05।

मुख्यमंत्री 5140 में। शुद्ध में जानो चुके की सरकार श्री व्याजू भाई दुकान की अंत्योदय राशन कार्ड धारकों और अग्रता धारण के कुटुंबों ने मेरा पात्र अनाज बाबते संबंधित जिला निवासी अधिक कलेक्टर श्री पर्याप्त कर सका है। अभी तो मेरा राशन मोबाइल ऐप द्वारा राशन कार्ड में लगती विविध माहिती तमज बोर्डा अनाज में जत्थे की रसीद मेरी सकाल तथा फरियाद बढ़ा सकाल है। जो अधिकारियों ने निर्णय की संतोष न पाए तो गुजरात राज्य अन्न आयोग गांधीनगर में सीधी अर्जी की अपील करी न्याय मोड़ सको। फोन नंबर 0709 2238 5409। શું તમે જાણો છો કે પીએમ પોષણ યોજના અંતર્ગત

नमस्ते, यह आकाशवाणी है। हम कभी नरेश गुलवाणिया खां देश विदेश या समाचार सिंधी में बदलना। सब खां पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजय स्वीडन जी बिंदियन जी यात्रा पे कृत्रिम गर्भ पाते। घरों में सहकारिता मंत्री अमित शाह चलो आ रहे तो मशीनी सोच एंड डीप टेक्नोलॉजी ई भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य बुनियाद होगा। ईरान ऐलान कयो आहे त हू हॉर्मुज जे सामूंडी रस्ते तां दुश्मन जे जहाज़नि खे गुज़रण जी इजाज़त न ॾींदो। अॼु आलमी दूर संचार ऐं सूचना समाज ॾींहुं आहे। आई पी एल क्रिकेट में हींअर आर सी बी ऐं पंजाब किंग्स जो मुक़ाबलो धर्मशाला में जारी आहे ऐं ॿी मैच जेका दहलीअ में शाम जो 7:30 बजे खां शुरू थींदी, इन में दिल्ली कैपिटल्स जो मुक़ाबलो राजस्थान रॉयल्स सां थींदो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड जो दौरो मुकम्मल करण खां पोइ पंहिंजे पंजनि मुल्कनि जे दौरे जे टे तबके में अॼु स्वीडन जे शहर गोथेनबर्ग पहुतो। स्वीडन जे पंहिंजे ॿिनि ॾींहनि जे दौरे दौरान श्री मोदी अॼु पंहिंजे स्वीडन जे सानी श्री अलफ क्रिस्टन सां ॿितरफ़ी ॻाल्हि ॿोल्हि।

संचार और सूचना सर्वजनी यानी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इन्फॉर्मेशन सोसाइटी डे आहे अजोके दी साल 1855 में पेरिस में मुत्तहिद राष्ट्र डिजिटल तकनीक एजेंसी है बैन अल्क़वामी दूर संचार संघ की स्थापना कई हुई इन डी जो मकसद इंटरनेट ए इन से जुड़ल तकनीक के हाकर यानी पॉजिटिव उपयोग के ऊज देना है। नागरिक हवाई उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू आज दिल्ली सरकार द्वारा हवाई जहाज टर्बाइन वारण पदार्थ से वैल्यू एडेड टैक्स ATF के 25% का घटाए 7% करने वाले फैसले की सारा कई है। सोशल मीडिया पोस्ट में इन कदम की सारा कहते श्री नायडू चाहिए तो अड़े वक्त में जैसे हवाई जहाज कितो आलमी अमल ए लागत वापस से दबाने जो सामनो कर रो है राज्य सरकार द्वारा थे अड़ा सरगर्म कदम एयरलाइन ए किफायती हवाई यात्रा में मददगार है। मरकजी मुहिम ए नवीकरणीय बिजली शक्ति मंत्री प्रहलाद जोशी चयो है तो मुल्क एक डी में रिकॉर्ड 256.4 GW बिजली की घुर के कामयाब नमूने मुकम्मल किया है। एक खानगी समाचार पत्र से जानकारी में श्री जोशी बुधायो तो कुल बिजली घुर जो अटकल 33% हिस्सो नवीकरणीय शक्ति जरिए से मुकम्मल किया वो हम साहब चाहो तो भारत जो बिजली ढांचो हाँ अगे का मजबूत विश्वास जोगो ए मुस्तकबल की जरूरत के लाय तैयार थी गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव अज वर्चुअल नमूने बेंगलुरु और मुंबई विच में नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी के साइड झंडी देखने रवाना कर इन मौके पर श्री वैष्णव चाहो तो दखण और उत्तरी कर्नाटक के मारू ज लंबे अरसे का रुकल मुतालबा हाँ पूरा थी रहे हैं। वही साहब चाहो तो बेंगलुरु और मुंबई विच में वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू थे की उम्मीद है। नेपाल के जबल से चढ़ाई कंदर कामी रीता शेरपा बटियों दफो माउंट एवरेस्ट से चढ़ी इतिहास रचो है। 56 वर्ष जो कामी रीता एवरेस्ट से सबका वधिक दफा चढ़ाई कंदर शेरपा है। नेपाल के कोशी प्रांत के सोलू खुम्बु में जावल कामी रीता पहले दफो साल 1994 एवरेस्ट से चढ़ाई कई हुई। आईपीएल क्रिकेट में जो राजस्थान रॉयल्स जो मुकाबलो दिल्ली कैपिटल्स से थी मैच शाम को 7:30 दिल्ली में खेली वी एक बी मैच जो धर्मशाला में पंजाब किंग्स है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से जारी है। इन में आरसीबी वीएम ओवर में 4 विकेट पिछा 222 रनसू जोड़ू मिलियल समाचार मूजिब पंजाब किंग्स 8.5 ओवर में 4 विकेट पिछा 70 रनसू जोड़ू इवो मुकाबलो हिंसर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन महीने की 31 तारीख यानी आरतवार भी मन की बात प्रोग्राम जरिए पैंजा विचार वंडी दो इन महीने रेडियो प्रोग्राम की 114 ही किस्त थी। मध्य प्रदेश में सख्त गर्मी जो कहर जारी है राज्य के 15 शहर में गर्मी पद 43 डिग्री सेल्सियस का मथे दर्ज किया गया है। आबुआ बेट में अंडमान ए निकोबार उपबेट में ओलह बंगाल के हिमालय से लगल इलाकन ए सिक्किम में तेज बरसात का इम्कान जाहिर गए हैं। अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय दक्षिण कर्नाटक के अंदरूनी इलाकन तमिलनाडु पुदुचेरी कराईकेल केरल माहे ए लक्षद्वीप में तेज बरसात थी सके थी। उत्तर ओलह के कराई वाले इलाकन में वध गर्मी पद बुधर तक 3 खां 5 डिग्री सेल्सियस ए ओलह हिमालय इलाकन में इन महीने की 19 तारीख तक 3 खां 4 डिग्री सेल्सियस वधी सके थो। दिल्ली मेट्रो खानगी वाहन यानी पर्सनल व्हीकल्स के बदला मेट्रो के उपयोग के हिमथाने लाए वादू ट्रेनिंग हलाएंगी। दिल्ली मेट्रो अनुसार यह फैसलो बिजली शक्ति ए धन की बचत तोड़े पर्यावरण की हिफाजत में मेट्रो की भूमिका के ध्यान में रखते वरतो गयो है। इन लाए हर सूमर डी 24 वादू मेट्रो ट्रेनिंग हलाई वेंदी। आखिर में खास खास खबरों एक बार बीहर बदला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज स्वीडन की बिन्नी की यात्रा से गोथेनबर्ग पहुंचो। घरू ए सहकारिता मंत्री अमित शाह चयो है तो मशीनी सोच ए डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य बुनियाद होंगे। ईरान ऐलान किया है तो वो हॉर्मुज के सामुद्री रस्ते

0: इट्स वेरी ऑब्वियस, वहाँ पे काफी ज्यादा अंतर है. जैसे यहाँ पे मैंने देखा, यहाँ पे पलाश नॉर्मली हम देखते हैं, हमारे यहाँ पे ब्रांस होता है. एंड मतलब ऐसे अलग अलग ऐसे जीव जंतुओं की काफी अलग अलग, जैसे यहाँ का एशियाई शेर फेमस है, हमारे यहाँ जिम कॉर्बेट में आपको बाघ दिखेंगे. तो बहुत ज्यादा अंतर है.
1: खाने पीने चाहिए कि रहने खाने चाहिए. जब अहिया गुजराती में तो लोग मैं सांभरी जगह के अंदर गुजराती से लंबी खबर से कि खाना में मिठास वगैरह जोइए, मीठो खाना में दाल में भी हमारे दाल जो है खान जो है साथ में पर हमारे जो है एक उत्तराखंड में खाओ भी है पर फेरफार से एक अपनी संस्कृति पर अलग अलग है. हमारे तो ये गरबा बहुत सरस है जो गुजरात में एक त्यौहार उत्तराखंड में एक मुख्य मैसेज पहला विषय
2: એની સાથે સાથે ખાણી પીણી માં આપણે એક વસ્તુ પણ યાદ રાખવી પડે, કારણ કે આપણા પ્રધાનમંત્રી શ્રી એ પણ એક વખત કહ્યું હતું કે ગુજરાતીઓ છે ને આખા વર્ષ નું તેલ ભરે.
1: ઉત્તરાખંડ
2: માં તો અઠવાડિયા નું બે વાર તેલ.
0: खाने पीने जब मैं शुरुआत में गुजरात आई थी तो मुझे इसी चीज से थोड़ा सा डील करने में टाइम लगा था कि हर खाने में मीठा है. हम इतना मीठा नहीं खाते हैं वहाँ पे, हमारे की डिशेज थोड़ी अलग होती है. यहाँ पे कढ़ी भी मीठी थी, हम लोग कढ़ी मीठी भी नहीं खाते हैं. बट अब आदत हो गई है
1: खाने.
0: जैसे हमारे यहाँ पे झोल भात होता है जिसको यहाँ कढ़ी बोलते हैं, चुड़कानी बनती है भटकी. टेस्ट वाइज भी हम नमक ज्यादा खाने वाले में से, यहाँ पे मीठा है हर चीज में, ये मेन डिफरेंस था. और जैसे यहाँ पे गरबा फेमस है, हमारे यहाँ पे झोड़ा खेलते हैं. मैं कुमाऊं नहीं हूँ, उत्तराखंड में भी दो डिवीजन है, कुमाऊं और गढ़वाल. तो आप गढ़वाल जाएंगे आपको थोड़ा अलग मिलेगा, कुमाऊं थोड़ा सा अलग मिलेगा. हमारे यहाँ झोड़ा होता है. झोड़ा जैसे यहाँ पे गरबा एक फोक डांस है, वैसे हमारे यहाँ का झोड़ा फोक डांस है.
1: लकड़ी के साथ
0: नहीं नहीं नहीं लकड़ी के साथ नहीं करते हैं, गले एक दूसरे के गले में हाथ डाल के वो राउंड करके, जैसे गरबा राउंड करके खेला जाता है वैसे झोड़ा.
1: જી આપણે અહીં જ વાત કરીએ, ગુજરાતની જ વાત કરીએ કે તમે પર્યાવરણ વિજ્ઞાન સાથે નાનપણથી આગળ ભણ્યા અને એની ઉપર જ આગળ ભણવાનું તમે ચાલુ રાખ્યું છે, અત્યારે રિસર્ચ તરીકે રિસર્ચર તરીકે કામ કરો છો. તો પર્યાવરણ વિજ્ઞાનની અંદર બીજું શું શું તમને ભણવામાં મળ્યું? પર્યાવરણ સાયન્સ એન્વાયરમેન્ટ સાયન્સ આપણે ભણ્યા તો ક્યાં ઉસમે જ્યાદાતર રહા?
0: એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સીસ એક બહુત હી વાસ્ટ સબ્જેક્ટ હૈ, આપ એક હી ચીજ નહીં પડતા હર ચીજ. અબ જૈસે મેં યહાં બાયોલોજી મેં હું, મેરા જો એન્વાયરમેન્ટલ સાયન્સીસ મેં કામ થા બિલકુલ ડિફરન્ટ થા. મેને વેસ્ટ મેનેજમેન્ટ સે લેકર કામ કિયા અપને એમએસસી મેં. एंड जब आप आते हैं एकदम से नाम आया अंडरस्टैंडिंग बायोडाइवर्सिटी, अब मुझे यहाँ आके पता चला कि बायोडाइवर्सिटी भी कितना वास्ट एक अलग सब्जेक्ट है पर्यावरण विज्ञान के अंदर और काफी गहराई तक है. तो इसी तरीके से हर चीज नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग करते हैं, मुझे इसी का एहसास हुआ कि हर एक चीज पर्यावरण से रिलेटेड है. आप बस अलग अलग चीजें पढ़ते हैं. मैंने क्लाइमेट पर्यावरण के अंदर क्लाइमेट चेंज, भूगोल विज्ञान, जियोलॉजी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब चीजें पढ़ी हैं. एंड बायोडाइवर्सिटी इज थोड़ा सा डिफरेंट देन दैट. बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता में आपको बॉटनी भी आ जा रहा है, जूलॉजी भी आ जा रहा है. तो बहुत मतलब है सब पर्यावरण के विज्ञान के अंदर है, बस अलग अलग है और बहुत बड़ा है.
1: જો આપણે અત્યારે એક અભિયાન ચાલુ છે પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત બનાવવાની જે વાત છે, જો હમ પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત બના રહે હૈ તો પ્લાસ્ટિક મુક્ત ભારત બનાને કે લિયે હમે ક્યા કરના ચાહિયે અભી?
0: જેસે મેમ પ્લાસ્ટિક મુક્ત હો જાના અપને આપ મેં મિથ્યા હૈ. હમ અભી આપ પ્લાસ્ટિક મુક્ત નહીં હો સકતે. આપ દેખે હર ચીજ મેં આપકો પ્લાસ્ટિક મિલેગા. તો બાત યે હૈ કે હમ કિસ તરીકે સે યુટિલાઇઝ કર રહે હૈ. तो आप बंद नहीं कर सकते हो, आप सोच ही नहीं सकते हैं कि हम बंद करके, क्योंकि नहीं चल पाएगा. जैसे अभी हम सेल फोन के बगैर नहीं रह सकते हैं, वो हमारी बेसिक नीड है. कहीं ना कहीं प्लास्टिक भी हमारी बेसिक नीड है. बट चीज ये है कि आप उसको जैसे छोटे छोटे से मेथड्स होते हैं या फिर ये कि अगर हम जागरूक रहे हैं वो चीज कर सकते हैं. रिसाइकिल होता है प्लास्टिक, हम लेके आते हैं जब शैम्पू के पाउचेस लेके आते हैं या दूध की थैली लेके आते हैं, हम छोटा सा फाड़ते हैं, हम फेंक देते हैं. तो उस छोटा वाला टुकड़ा वो रिसाइकिल नहीं हो सकता है. उसके अलावा का जो प्लास्टिक है वो रिसाइकिल होता है. तो ये छोटे छोटे से तरीके हैं कि हम थोड़ा कम करें, यूज कम करें। अगर आपके पास थैला है तो बजाय मार्केट जाके नया थैला, आप पुराना थैला लेके जाइए, आप जूट बैग्स यूज कीजिए, आप प्लास्टिक की बोतल्स मत यूज कीजिए, आप नॉर्मल थर्मस यूज कीजिए। तो ये सब तरीके हैं, तो इससे हम माइक्रो प्लास्टिक्स को रोक सकते हैं। बाकी संवेदनशील, सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगा है आज तक एनवायरमेंट के, उसमें कि आपको संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। अगर आप सेंसिटिव नहीं है तो फिर आप बस पढ़ेंगे और हमको लगेगा कि हमारे एक करने से क्या होगा, असल में फर्क पड़ता है।
2: ये बहुत अच्छी बात कही आपने कनिका जी। मुझे एक थोड़ा फर्क आपसे ये जानना है कि उत्तराखंड में प्लास्टिक के प्रति क्या है लोगों का नजरिया है। जैसे यहाँ गुजरात में आपने देखा होगा कि गुटखा वगैरह खाने के लिए लोग प्लास्टिक के छोटी छोटी पत्तियों में वो घुमा के फिर खा जाते हैं और पत्ती बाहर फेंक देते हैं। तो वहाँ ऐसा इतना प्लास्टिक का दूषण है उत्तराखंड में या यहाँ आपको ज्यादा मिला?
0: सर, उत्तराखंड में लोग तो सब जगह अगर जागरूक ना हो तो होता ही है, लेकिन जैसे मैं नैनीताल से पड़ी हुई, मैं हूँ भी नैनीताल से, तो वहाँ पे वो टूरिस्ट एरिया है, तो उस टूरिस्ट एरिया में वहाँ पे काफी लोग आते हैं, मतलब भीड़ होती है, काफी जाम है, एंड जो बाहर से पढ़े लिखे आते हैं ना, विच वी थिंक एंड यू कैन सी द डिफरेंस, आप डिफरेंस देख सकते हैं एक एजुकेटेड इंसान में और एक अनसिविलाइज्ड इंसान में। जगह नहीं है कि आप एजुकेटेड हैं तो आप में विजडम भी हो, आप हर चीज ना करें। लोग आके टूरिस्ट सबसे ज्यादा गंदगी करके जाते हैं। आप झील में देखेंगे, बट क्लॉगिंग हुई थी 2021 में बाढ़ आई थी, एंड उसमें सारा का सारा प्लास्टिक निकला, बिकॉज जो जो आप खा रहे हैं आप फेंक रहे हैं। तो इस तरीके लोग सब जगह हैं, क्योंकि हम लोग हैं ही नहीं एनवायरमेंट के प्रति सेंसिटिव, एंड वी आर जस्ट कि हम आए हैं घूमेंगे। आई जस्ट क्वेश्चन माई सेल्फ समटाइम्स कि आई ऑल्सो सेंसिटिव अबाउट पर्यावरण एनवायरमेंट। तो जब तक हम खुद से क्वेश्चन नहीं करेंगे ना, हम नहीं रुकेंगे। तो वो इश्यू सबके साथ है, पहाड़ों में बस टूरिस्ट आके करते हैं, वहाँ के लोग भी हैं और उनके बिजनेस चल रहे हैं, नोबडी से एनीथिंग। फिर भी सफाई वगैरह होती है, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओज है, काम कर रहे हैं। हिमाचल में बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है वेस्ट वॉरियर्स, वो लोग जाते हैं साफ सफाई करते हैं। तो इसी तरीके की चीजें हैं जो मैं हिमाचल से, जैसे मेरा MSc है, मास्टर्स है, तो आई हैव सीन देयर आल्सो।
1: जैविक विविधता जतन कार्यक्रम छे ने एमां सौथी वधारे आपणी पर्यावरण, अपनी विविधता, अपनी संस्कृति, अपनी बायोडायवर्सिटी जो कही है, अपनी विविधता, ए बधानी वात छे। एमां खास करीने वनस्पति अने वृक्षोनी वातो पण आपणे घणी बधी वणी लीधी छे। तो वृक्षो अने वनस्पतिमां अपने शुं लागे छे कि पहेलानी आपणी परंपरा जे हती, वनस्पतिओने पूजता हता, आपणे दर्शन करता हता, एमने उगाडवामां आपणे जे एक जहमत उठावता हता, ये जहमत अत्यारे पण छे ज? यानी हम बोल सकते हैं कि जैविक विविधता के दौरान हम हमारी वनस्पति जो है, हमारे पेड़ पौधे हैं, तो उसको उगाने में हम क्या योगदान देते हैं?
0: मैम, वनस्पति उगाना लाइक ट्री प्लांटेशन हम जिसको बोलते हैं, कि आप जा रहे हैं, आप उगा रहे हैं, बट वो एकदम से तो नहीं होता है। आप जिस मात्रा में काट रहे हैं उस उतने स्पीड से तो नहीं बढ़ेगा। तो कहीं ना लोगों ने या फिर आप बोली कहते हैं जाके, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, री वॉटरिंग द प्लांट कोई नहीं कर रहा है ना, तो वो रहेगा या नहीं रहेगा। एंड उसके अलावा भी, जैसे मैं यहाँ का एक एस्टिमेट पढ़ा रही थी, एस्केशिया टेटेचू जिसे हम कत्था बोलते हैं, उसका पॉपुलेशन 2013 में अराउंड 37 लाख था इन गुजरात, और वो अब डिक्लाइन होते हुए 1 लाख पहुंचा हुआ है। इतना ज्यादा डिक्लाइन है एस्केशिया टेटेचू के उसमें। तो हम कहां से, ग्रीड, ह्यूमन ग्रीड, एंड हम भी चाहते हैं कि हमारे पास, यू नो, पीपल आर यूजिंग, इतना महंगा फर्नीचर हमने लगाया है, तो वो फर्नीचर कहाँ से आ रहा है? आप टिम्बर काट रहे हैं, आप पेड़ काट रहे हैं, तो वो ग्रीड्स पे तो हमको भी सोचना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ब्लेम करके कुछ नहीं होता है इन अ सेंस ऑफ पर्यावरण। आप नहीं, आप ब्लेम कर सकते इन्होंने पेड़ काट दिया, बट वी आर डूइंग, आर वी क्वेश्चनिंग देम। मैं थोड़ी छोटा सा इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मैं इन्वायरमेंटल साइंस स्टूडेंट थी जब धर्मशाला में, तो हम पर्यावरण विज्ञान पढ़ते थे, हमारी क्लासेस लगती थी, एंड ऑन एनवायरमेंटल डे एक गोष्ठी रखी गई थी सेमिनार काइंड ऑफ। तो उसमें वो आए थे ना जो, तो दे वर टेलिंग अस कि ऐसा ऐसा है, इतना क्लाइमेट चेंज होगा, ऐसा होगा, और वही सामने पैसे घंटा दिख रही है, 1 लेन पार्क को काट के आप 4 लेन बना रहे हो, सारे के सारे पेड़ काटे विद इन 6 मंथ्स। एंड आई जस्ट क्वेश्चन टू माय प्रोफेसर सर, व्हाट वी आर डूइंग, व्हाई वी आर नॉट सेइंग एनीथिंग, एंड उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, एंड एक अकेला इंसान सच में कुछ नहीं कर सकता है इसमें। ऑर्डर्स हैं, वो फॉलन मैंने डायरेक्ट लेन का फॉलन, बट इसी तरीके की चीजें आई डोंट थिंक सो कि इतना जल्दी इतना कुछ बदलेगा जब तक सेंसिटिविटी नहीं आएगी लोगों में. और हमने वो क्लाइमेट चेंज अपने आंखों के सामने देखा है कि किस तरीके से धुआंधार इतनी बारी आ रही है, ये आ रही है. आई एम नॉट सीइंग

0: बैठे देख रहे हैं, बट वी आर इग्नोरिंग कि हमारा क्या है, हमारा खाना थोड़ा नुकसान हो रहा है, पहाड़ों में नुकसान हो रहा है, यहाँ नुकसान हो रहा है। समानुभूति वाली भावना भी जरूरी है कि आप अपने आप को रख के देखिए उस प्लेस में, अगर आपका घर जाएगा, अगर वो आपके परिजन होंगे या आपके साथ कुछ होगा, देन ओनली कमेंट कराइए कि हाँ पर्यावरण को बचाना है। तो उस तरीके से
1: आपने बिल्कुल सही बात कही कनिका जी, બેસાડી દે સ્કૂલ સુધી અને સ્કૂલ માં મૂકી જાય, ટ્રેન પણ એવી રીતે નાનકડી ટ્રેન જે શિમલા ની જે છે, તો એ ટ્રેન જતી હોય ત્યારે વચ્ચે બાળકો જુએ એટલે ટ્રેન ધીમી પડે તો ડૂબી રહીને બાળકો બેસી જાય, એવું તો એના કરતા વિશેષ હતું કે તને નવાઈ લાગશે એને કે ત્યાં ચોર પકડાયો ને તો લોકો જોવા આવતા હતા, એટલા બધા પ્રકૃતિ સાથે જોડાયેલા, એમને ચોરી શું એ ખબર નહોતી, ચોર કેવો હોય એમને મને નવાઈ ની યાદ હતી, એટલે આવી સંસ્કૃતિ જયારે એટલી સરસ હતી ઉત્તરાખંડમાં, તો અબ ઉસમે ક્યા ફર્ક, આપણે જૈસે કહા કે લોક પ્લાસ્ટિક વાલે ટૂરિસ્ટ આતે હૈ તો વહાં કચરા કરતે હૈ પ્લાસ્ટિક ડાલતે હૈ, બાકી વહાં કે લોકો મેં કુછ બદલાવ આયા ઉનકી જીવનશૈલી મેં કે જિસસે પર્યાવરણ કો કુછ નુકસાન હુઆ યા ફાયદા હુઆ?
0: સર પહાડો મેં અગર આપ ઇન્ટીરિયર ઉત્તરાખંડ જાયેંગે, પિથોરાગઢ જાયેંગે, આપ અંદર કે ગાંવ મેં જાયેંગે ના તો આપ પાયેંગે લોગ હૈ હી નહીં, લોગ છોડ ચુકે હૈ, ક્યુંકિ एक तो संसाधन नहीं है, काफी टफ लाइफ है, तो हम इसको बदलना नहीं बोलेंगे, लोग शहरों की तरफ अग्रसर हुए हैं एंड कोई है ही नहीं तो कोई क्या ही बचाएगा, और आप जब आते हैं ना तो आप मनी माइंडेड हो जाते हैं, जहाँ से मतलब रोज वो उसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, फिर अगर आप देखे जब फिलोसफी की या फिर ऐसा, तो चेंजेस तो है लोगों में, लेकिन अभी भी अगर जो त्योहारों के माध्यम से बचा हुआ है जो ये अब हो रहे हैं लोग थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं कि सब लोग ही इनसेंसिटिव है, समझ रहे हैं जब देख रहे हैं, लेकिन है कि अब पहाड़ खाली हो चुके हैं, बंजर हो गया है, क्योंकि एजुकेशन का भी वो है, इसमें इतना कोई जागरूक नहीं है इन्वायरमेंट को लेके, मैंने ही खुद इन्वायरमेंटल साइंसेज लिया था, मुझे बहुत ने बोला था स्कोप बहुत कम है इन्वायरमेंटल, इंडिया में नहीं है, मैं सिंपल स्टेटमेंट हूँ, इंडिया में स्कोप कम है, अगर आपको कुछ जाना है तो मैं बाहर जाके करना पड़ेगा ऐसा सा, तो वो अब आ रहा है चेंज, जब आप देख रहे हो कि इतना क्लाइमेटिक चेंज है, ये है वो है, तो वो जागरूकता की कमी है, एजुकेशन की कमी है, और संसाधनों की तो बहुत कमी है पहाड़ों में अगर देखा जाए तो
2: कभी कभी घड़ी वक्त हो हमारे पास तो जुड़ा मारे जाए घर बच्चों उपाय कही ना मेरे के कि नानू बालक जरा बीमार पड़े ने तो इन्हें सर्दी थी हुई ने तो तात्कालिक हम तो मिलगिरी छे थोड़ी कहीं गाड़ी પાન ચોડી ની છાતી ઉપર લગાવી દો એટલે એને સારું થઈ જશે, તુલસી છે તો થોડું વાટી ને મોઢા માપી દો તો સારું થઈ જશે, પછી દોડી નો પાવડર છે દોડી ની વાટી નાખી દો તો તાવમાં થોડીક રાહત થશે, એવી રીતે ધર્મ આવે છે કે દોડી છે કેવી રીતે, તો એવા નાના નાના ગર્ભત્વ ઉપચારો હોય ને તો એનાથી બાળક અથવા તો મોટા વ્યક્તિ સાજા થઈ જાય, જલ્દી હમ રિકવર હો જાતે હૈ, તો વૈસે એસે આપકે યહાં આસપાસ કી એસી કોઈ વનસ્પતિ હૈ कि कोई बीमार हुआ हो तो अपनी मम्मी ने तुरंत लाकर वो वनस्पति दे दी हो, वो पीस के दे देती हो, लपेट के दे देती हो और आपको अच्छा हो जाए, ऐसा कुछ है?
0: हमारे यहाँ पे घास होती है उसको नेटल बोलते हैं, नेटल इंग्लिश, उसको हमारे बिच्छू घास बोलते हैं, वो पहाड़ों में अपने साइड का होती है, तो ऐसे उसमें काफी सारे कांटे होते हैं, फिर टच दैट आप छुएंगे ना आपको एकदम से झटका लगेगा, उसमें मेथनाइक एसिड होता है बेसिकली, तो वो हमारे यहाँ जैसे बोलते हैं ना पैरों में खाला पड़ गया है, जैसे नस उड़ जाती है पीछे की वो जल जाती है, तो कभी कभी पेन है बैक पेन है, तो उसको अगर लगाओ तो एकदम से सुन सा कर देता है एंड काफी मतलब वो उसमें क्योंकि मेथनाइक एसिड होता है मेनली, उसमें जितना मैंने पढ़ा है तो उसका नहीं होता है, मैंने काफी मेडिसिन पहनता है उस सब्जी वाले खाने से भी बोलते हैं कि काफी सारे रोग ठीक होते हैं, तो पहाड़ों में तो बेसिकली मुझे नेटल का इसका ज्यादा पता है, बाकी मोरिंगा वगैरह तो सब जगह है, मोरिंगा तो आती है मुझे इसका भी ज्यादा पता है, बाकी और भी छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे एक हमारे यहाँ उसको बोलते खिलमोड़े, हाँ छोटे छोटे सा फ्रूट होते हैं रेड कलर के, तो वो भी काफी अच्छा होता है फॉर हेल्थ, होता है कांटेदार है और छोटे छोटे रेड कलर के काइंड ऑफ बहुत बहुत बड़े बने, तो वो होता है, और एक मनचारी साइड को आप थोड़ा सा हाई एल्टीट्यूड में जाएंगे तो आपको मिलेगा तिमूर,
2: तिमूर
0: तिमूर का, तो वो भी आप इफ यू रीड दैट वजह से झंझनाहट होती है ना, काफी कूलिंग इफेक्ट वो देता है और दांत दर्द वगैरह में या फिर उसमें मेनली जो है ना कि शरीर पार्ट्स है

0: है तो थोड़ा सा एक्टर शाखा जिनको बोलते हैं शाखा भोटिया आपने सुना होगा तो दे पीपल यूज इट वो अपने खाने वगैरह में रहते हैं तो पर्सनल आंसर भी होता है पर उसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी बहुत है
1: क्योंकि ये बड़ा गुजराती तुलसी से गरमाणो है डोड़ी से सरगो है नीलगिरी से औषधीय प्लांट अगर बता कही तो कितना बड़ा अपना अलग अलग डिफरेंट है
2: ઉપયોગ ખાસ કરીને નિંદામણ સિવાય બીજું કઈ છે જ નહીં અને એ રીછોડો છે રીછોડાના બહુ બધો ફળ હોય તો શેરેભાઈ એવું કરાવે તો શોખીન જે હોય ને ગુજરાતના યુવાનો ખાસ કરીને ગ્રામ વિસ્તારના પોતાના નવા બુટ ચંપલ બનાવતી વખતે એની વચ્ચે એનું તેલ નાખી દે વિછોડાનું તેલ નાખી આખા ઘર ચાલે ત્યારે કચર કચર કચર કચર બુટ થાય
1: એટલી બધી વસ્તુ જુદી છે
2: એ છે
1: કનિકાજી અમારે અભી ગરમી કી સીઝન ચાલુ હો ગઈ હૈ તો આમ બોલતે કેરી બોલતે વો બહોત હી પ્રખ્યાત હૈ સભી કે ઘર મેં ગુજરાત મેં કેરી તો દિખને મિલેગી હી મિલેગી તો વૈસે અલગ અલગ ફ્રૂટ્સ હોતે હૈ વો ભી સીઝનલ ફ્રૂટ્સ હોતે હૈ વો હમ ખાતે હૈ વૈસે ઉત્તરાખંડ કા કોઈ ફેમસ ફ્રૂટ હો તો આપ બતાઈએ
0: આમ તો ફલો કા રાજા આમ તો વહાં ભી બહોત હૈ તો આમ હૈ ઓર માલ્ટે અગર આપ માલ્ટા માલ્ટા સર સંતરા ઇઝ ડિફરન્ટ સર માલ્ટા માલ્ટા સંતરા
3: અલગ હૈ વો માલ્ટા હા
0: उसका उपयोग कर मतलब हाँ माल्टा संतरे की ही शायद संतरा जैसा दिखेगा है माल्टा माल्टा इज डिफरेंट और दैट फिक्स फिक्स को उसमें जो बिकता भी है काफी तिमिल बोलते हैं हमारे वहाँ पे तिमिल
3: तिमिल
0: हाँ तो जो फिक्स नॉर्मल ड्राई फ्रूट्स में नहीं बिकता है जिसको इंसेक्ट ही पोलिनेट करता है वो होता है हमारे यहाँ पे और काफी और भी अलग अलग फ्रूट्स हैं जैसे मेनली सिट्रस फ्रूट आपको बहुत मिलेंगे एक बड़ा वाला सा नींबू होता है वेरी बिग लेमन वो काफी होता है उसको जाड़ो में नींबू सानना बोलते हैं हमारे वहाँ तो काफी उसको बोलते हैं कि काफी अच्छा होता है अगर आप जाड़ो में खाए उसमें मूली डाल के रेडिश डाल के भांग का नमक डाल के एंड हाँ जो प्रिफर भांग का नमक ऑल्सो वो नशीला नहीं होता है
3: अच्छा।
0: जो भांग के दाने होते हैं उनको रोस्ट करके बनाया जाता है तो वो भांग का नमक और इसी तरीके की डिशेस होती हैं बाकी मिठाइयों में आपने सुना होगा बाल मिठाई अल्मोड़ा की फेवर जी आई टैग है उत्तराखंड का बाल मिठाई तो उसमें जो सीड्स यूज होते हैं वो पॉपी सीड्स होते हैं रोस्टेड पॉपी सीड खसखस हाँ तो वो लगता है अभी मैं रिसेंटली जब आई थी अपने वहां से मैरिज फंक्शन में सबके लेकर आई थी बाल मिठाई तो इसी तरीके से जैसे यहाँ का मुझे अगर मैं गुजरात की बात करूँ मुझे यहाँ का जलेबी पापड़ा बहुत अच्छा लगा
3: अच्छा लगता
0: है खाखरा बहुत अच्छा लगा दो फेवर्ड खाखरा बाकी सारा खाना अच्छा है मुझे थोड़ा मीठा कम खाती हूँ
2: और दूसरी जो मिठाइयाँ हैं इसके अलावा पशुपालन में गायों भैंसों वगैरह का कैसा स्थिति है
0: गाय पाली जाती है भैंस भी पाली जाती है भेड़ आपको दिख जाएगी नॉर्मली गाय भैंस का ज्यादा है वहाँ पे की और अब तो जैसे मैंने बोला कि पहाड़ खाली हो गए हैं तो नॉर्मली पहाड़ों में आपको मिलेगा बहुत इंटीरियर मिलेगा जो लोग पुराने हैं जो नहीं छोड़ पाए अदरवाइज जैसे शहरों में मिलेगी पालते हैं गाय वगैरह देसी देसी ब्रीड वहाँ बहुत ज्यादा वो होती है बाकी गाय भैंस तो पशु लाइव स्टॉक ऐसा ही है जैसे यहाँ है
2: आपने जो ये चीजों के बारे में कहा कुछ उत्तराखंड में प्रकृति से जुड़े कुछ त्योहार हैं या पर्व हैं
0: हाँ जी काफी सारे पर्व हैं जैसे अभी फूलदेई मार्च में अभी फूलदेई का त्योहार था जिसको हम बोलते हैं कि चैत्र की शुरुआत हुई है तो उसमें बच्चे जाते हैं हर प्रकार के फूल तोड़ते हैं फूल लेके आते हैं और सबके चौखट में डालते हैं और उसका जिक्र एक काफी आई गेस किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रिस्ट ने भी अभी रिसेंटली किया था मुझे नाम नहीं याद आ रहा है फूलदेई का तो बदले में लोग आशीर्वाद देते हैं और उनको गुड़ देते हैं या फिर वो देते हैं तो एक तरीके से प्रकृति के प्रति आपका थैंकफुलनेस है कि ईश्वर हर एक चीज में है ऐसा अभी आएगा जून में हरेला हरेला से 10 दिन पहले बुआई करते हैं मतलब छांव में रखते हैं तो हर प्रकार का अनाज डाला जाता है तो हर प्रकार के अनाज को मिट्टी के किसी उसमें रख के उसमें सनलाइट नहीं पड़ने देते हैं 10 दिन तक फिर जो उगता है उससे हरेले वाले दिन जी रहा जागी रहा ऐसे करके एक प्रॉपर है कुछ लाइन्स, उसको बोल के आशीर्वाद दिया जाता है। तो वो भी एक तरीके से है कि वाइल्ड हाउस भी बोलिए आपके प्रकृति प्रेम पर्यावरण के प्रति कि कितना जरूरी है ये चीजें, तो उन चीजों को भाषा रख लिया। और कई सारे है हमें, तो मुझे लगता है कि भारत में हर चीज ही प्रकृति को थैंक्स करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए है।
2: प्रकृति से जुड़ा त्योहार अभी यहाँ भी आपको देखने मिलेगा, खास करके वैशाख मास में तीसरे के दिन जिसे हम अक्षय तृतीया बोलते हैं। अक्षय तृतीया के दिन बैल का पूजन होता है, फिर उसी दिन वहाँ से शुरुआत करते हैं खेत जोतने के। तो ये यहाँ गुजरात में भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ एक त्योहार आ, तो ये तो है ही, अभी आ रहा है गर्मियों में। पहले तो ऐसा था कि जब ट्रैक्टर वगैरह जब नहीं थे तो बड़े बड़े खेत एक साथ अकेले करने में किसान थक जाता था, तो क्या उसे बोलते हैं भैंसा। भैंसा में क्या कि एक साथ 10-15 किसान एक साथ मिलेंगे और एक ही खेत में जाएंगे और सुबह से शाम तक पूरा खेत जोत देंगे और फिर दूसरे दिन दूसरे किसान के वहाँ जाएंगे और जिस किसान के घर गए हैं वहाँ उस दिन दूसरा कुछ नहीं बनता है, चने की सब्जी बनती है सूखे चने की और साथ में जिसे हम यहाँ सुकड़ी बोलते हैं गेहूं के आटे से बनती है जो मिठाई और छाछ या दूध यही चीजें होती है वो लोग खाते हैं बड़े चाव से। इससे दो चीज एक साथ होती है, एक तो प्रकृति के साथ जुड़ते हैं और एक दूसरे से मनमेल ज्यादा बढ़ता है। तो ये यहाँ की एक संस्कृति है गुजरात की।
1: बहुत सरस चर्चा रही, खरेखर गुजरात और उत्तराखंड में मिक्सिंग बातों करवा में आनंद खूब आयो, श्रोता मित्रों ने नजर आवश्यक। कनिका जी आप संदेश क्या देना चाहोगे श्रोता मित्रों को?
0: मैं संदेश यही देना चाहूंगी, मैंने शंकरनाथ थोड़े टॉक में भी ये चीज बहुत बार यूज करी कि संवेदनशील बनिए, सेंसिटिव बनिए, अपने आसपास चीजें ऑब्जर्व कीजिए, कई सारी चीजें हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हम ध्यान दे। तो अगर आप जा रहे हैं चलते चलते, मैं अपने साथ हमेशा रखती हूँ, अगर मेरे पास बैग है तो मेरे बैग की साइड पॉकेट अगर दो है जिसमें बॉटल रखते हैं तो उसमें सारा कूड़ा भरा हुआ होता है। तो डोंट ऐसे मत फेंकिए, इधर उधर मत फेंकिए, देखिए सामने रखिए डस्टबिन दिखता है फेंक दीजिए। छोटी छोटी सी हैबिट्स है, बच्चों को सिखाइए कि किस तरीके से थैंकफुल रहा जाता है, प्रकृति आपको कितनी चीज दे रही है। मैं जब से मैं यहाँ पे आई हूँ ना, मैं जब चीजें डॉक्यूमेंट करती हूँ डॉक्यूमेंटेशन, अभी मेरे पास जो काम है वो है कि गुजरात का सारा बायोडाइवर्सिटी का एक की बनानी है जो यहाँ पे है ऑलरेडी, उन चीजों को लिखना है। तो जब मैंने उन चीजों को पढ़ना शुरू किया, अब मैं अकेले बैठती तो मुझे वो चीजें नोटिस हो रही होती है कि अरे ये वाला वीड है, ये वाली खरपतवार है। तो वो ऑब्जर्वेशन आएगा जब आप संवेदनशील हो गए, आप कितने ध्यान से कर रहे हो चीजें। और भी कई सारी चीजें हैं, आप थैंकफुल रहिए प्रकृति को। अभी इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, बहुत हो रहा है एंड हमको ये चीज पता है, तो इग्नोर मत कीजिए इस चीज को। देखिए अपने साइड से आप जो कर सकते हैं, छोटे छोटे एफर्ट्स ही डालिए, एकदम से चीजें नहीं बदल सकती है। तो आप मत फेंकिए कूड़ा, आप देख रहे हैं आप लोगों को बताइए कि ऐसे मत फेंकिए, तो आप साफ रखेंगे खुद साफ रहेगा। तो छोटे छोटे एफर्ट्स आप खुद भी कीजिए।
1: खूब खूब आभार, खूब सरस माई दीदी, नमस्कार, धन्यवाद।
2: खूब सरस माई दी मेरी बहन, खूब आभार, धन्यवाद,
0: धन्यवाद।
4: मुझे गमने नहीं लगते कि आपके माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई कहे छे तेम अनेकता में एकता अने विविधता में समानता ये भारत की ओळख छे।
2: गुजरात में पण जैविक विविधता एटली ज समृद्ध छे, एटले तमारे त्यां पण आवी कोई वनस्पति पशु पक्षी के मानव जीवन की विशेषता होय तो अमने चौक्स जनावजो।
4: ए माटे अमारो फोन नंबर तो जाणो छो,
2: 94-276-0596 અને પત્ર લખો સરનામું પર જાણું છું,
4: જૈવિક વિવિધતાનું જતન,
2: ગુજરાત રાજ્ય બાયોડાયવર્સિટી બોર્ડ,
4: અરણ્ય ભવન,
2: બી લેન,
4: 5મો માળ,
2: સેક્ટર 10, ગાંધી નગર।
4: તો આવતા રવિવારે આપણે જૈવ વિવિધતાના જતન માટે બધું અગત્યની વાત લઈને ફરી મળીશું, ત્યાં સુધી તમારી સાથે

0: आप सभी रहता प्रायोजित कार्यक्रम जैविक विविधता अनुजतन प्रसारण आकाशवाणी ने अहमदाबाद वडोदरा केंद्र पर करवा
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरते प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब लुटन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रॉब लुटन के साथ प्रसिद्ध अस्नाउट डाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीक के सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंडात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।

0: రిపబ్లికని ఉద్దేశాలను
1: 33% ఇస్తుంది రెన్యూబుల్ ఎనర్జీ.
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया. इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगें पूरी हो रही हैं. उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी. गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी. भारत ने कहा है कि होर्मुज जलबंधु मार्ग में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत मिनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता. और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है. जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं. दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: आकाशवाणी भुज प्रस्तुत छे मुख्य समाचार. પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ આજે નેધરલેન્ડ પ્રવાસના બીજા દિવસે ઓસ્લોની મુલાકાત લીધી. જનગણના 2027 અન્વયે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પોતાની સ્વગણતરી ઓનલાઈન માધ્યમથી પૂર્ણ કરીને વસ્તી ગણતરી 2027ની સ્વગણતરીનો ઔપચારિક પ્રારંભ કરાવ્યો.

से कहा था ऐसा फेज गैर फिल्मी गीतों में कार्यक्रम अहिं समाप्त थाय छे। प्रसारण आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र पर कर श्रोता मित्रों विचार करें आकाशवाणी अमदावाद वडोदरा केन्द्र बराबर 7:10 प्रादेशिक समाचार प्रसारित कराशे।

आकाशवाणी समाचार सुनील परमार राज्यशे सर्वप्रथम मुख्य समाचार। स्वीडन पहुंचेला प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तेमना समकक्ष उल्फ क्रिस्टोफसन साथ द्विपक्षीय वाटाघाटो करशे। केन्द्रीय गृह अने सहकार मंत्री अमित शाह गुजरात ने गांधीनगर में 700 करोड़ रूपया की वधु विकास कार्य की भेट आपी। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशीए जणाव्युं भारत एक दिवस में 256 गीगावॉट वीजळीनी मांग सफलतापूर्वक पूर्ण करी। लश्करी साधनों वहन करता जहाज ने होर्मुज समुद्र धूनी पसार न थवा देवा ईरान ने चेतावनी। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरुए पंजाब किंग्स ने 23 रन हराव्यू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वीडन में गोथेनबर्ग पहुंचा। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान ने देश ने हवाई क्षेत्र में प्रवेशता ज स्वीडिश ब्रिटेन फाइटर जेट से आवकार्य। गोथेनबर्ग विमान मथक पर पहुंचा बाद प्रधानमंत्री मोदी ने उष्मापूर्वक स्वागत कर स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टोफसन द्वारा व्यक्तिगत स्वागत कर स्वीडन की तमाम 2 दिवसीय मुलाकात दरमियान श्री मोदी आज स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टोफसन साथ द्विपक्षीय वाटाघाटो करते द्विपक्षीय संबंधों में समग्र क्षेत्र की समीक्षा करते। बने पक्षों व्यापार ग्रीन ट्रांजिशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उभरती टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स स्थितिस्थापक सप्लाय चेन संरक्षण अवकाश आबोहवा कार्यवाही और लोगों साथ संबंधों में सहयोग में नवा मार्गो पर चर्चा करते। प्रधानमंत्री यूरोपियन कमीशन प्रमुख उर्सुला वोन डर लेयन साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री एक अग्रणी पैन यूरोपियन बिजनेस फोरम ने संयुक्त रीते संबोधित करते। आ अगौ नीदरलेंड

0: रूपये 70,000 पर हस्ताक्षर कराया था। गुजरात में महत्वाकांक्षी कल्चर प्रोजेक्ट माटे भारत नेदरलैंड टेक्निकल सहयोग में आ मुलाकात एक महत्वपूर्ण पगलू छे। कल्पसर प्रोजेक्ट में खंभात आखात पर 30 किलोमीटर लांबो बंद बांधवा समावेश थाय छे, जे नर्मदा साबरमती मही और घाघर सहित मुख्य नदियों में मीठा पानी ने रोकशे, जेनाथी एक विशाल बीजा कांठे जलाशय बनशे। सोशियल मीडिया संदेश में श्री मोदीए कहूं कि तेमनी नेदरलैंड मुलाकात थी द्विपक्षीय संबंधों में नवी गति मळशे। केन्द्रीय गृह और सहकार मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर में 700 करोड़ रूपया विकास कार्य की भेट आपी छे। राज्य में 2 दिवस प्रवास श्री शाहे गांधीनगर महानगरपालिका 600 करोड़ रूपया विकास कार्य लोकार्पण और खातमुहूर्त कर दशेला खाते अंदाजे 128 करोड़ खर्चे मधुर डेरी नवनिर्मित मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट लोकार्पण कर आ प्रसंगे तेमणे पशुपालकोनी आवकमां 20% वृद्धिनो लक्ष्यांक हासिल करवानी नियम व्यक्त करी। तेमणे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन खाते इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन सेंटरनुं लोकार्पण कर्युं। तेमणे एनआईडीना महत्व पर प्रकाश पाडता कह्युं, एनआईडी जेवी संस्थाओ द्वारा युवानोने नवाचार अने व्यावसायिक विकास माटे योग्य माळखुं मळे छे।
1: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: अगले दिन अहमदाबाद में ट्रागर में मिलियन माइंड्स टेक पार्क फेज 1 और ग्रामी सिटी कैंपस में उद्घाटन करते कहूं कि भारत विश्व ने दरक उपलब्ध क्षेत्र में अग्रणी बन्यु छे।
1: एआई बिग टेक एक भविष्य की अर्थव्यवस्था है और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जितने भी नए सेक्टर है विश्व में, इसमें आज भारत फाउंडर बना हो। आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है।
0: केन्द्रीय नागरी और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जणाव्यु छे कि देशे एक ज दिवस में रेकॉर्ड 256.4 गीगावॉट वीजळी मांग सफलतापूर्वक पूर्ण करी छे। एक खानगी अखबार साथे वात करता श्री जोशी जणाव्यु कि कुल वीजळीनी मांगना आश्रे 33% नवीनीकरणीय ऊर्जा स्त्रोत द्वारा पूर्ण करवामां आवे छे। तेमणे उमेर्यु हतुं कि भारतनुं वीज माळखागत माळखुं हवे मजबूत, वधु विश्वसनीय अने भविष्यनी जरूरियातो माटे तैयार छे। આ સમાચાર આપ આકાશવાણી પરથી સાંભળી રહ્યા છો। આ સમાચારનું જીવંત પ્રસારણ આપ અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એઆઈઆર ન્યૂઝ ગુજરાત પર પણ સાંભળી શકશો। વધુ સમાચાર માટે અમારી વેબસાઇટ newsonair.gov.in/u અને અમારા એક્સ હેન્ડલ AIR_ABAD ને ફોલો કરશો। ઈરાને જાહેરાત કરી છે કે તે લશ્કરી સાધનો વહન કરતા જહાજોને હોર્મોઝ સામુદ્રધુનીમાંથી પસાર થવા દેશે નહીં। આ સામુદ્રધુની વૈશ્વિક ઉર્જા વેપાર માટે એક મુખ્ય દરિયાઈ માર્ગ છે। ઈરાનના પ્રથમ ઉપરાષ્ટ્રપતિ મોહમ્મદ રેઝા આરિફે જણાવ્યું છે કે ઈરાન અગાઉ આ જળમાર્ગ પર પોતાની સંપૂર્ણ સાર્વભૌમત્વનો ઉપયોગ કરવામાં સંયમ રાખ્યો છે અને ઈરાન વિરુદ્ધ ઉપયોગમાં લેવાતા લશ્કરી સાધનો વહન કરતા જહાજોને પસાર થવા દીધા છે। તેમણે જણાવ્યું હતું કે આ નીતિ હવે બદલાશે। ગઈકાલે ઈરાની સંસદ

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम साज और आवाज, क्लेरिनेट पर थे मास्टर इब्राहिम। अभी सुनते हैं कार्यक्रम हवा महल।

0: आज के कार्यक्रम में सुनिए चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका।
1: मुन्नू की माँ, अरे भाई मुन्नू की माँ
2: आ गए स्कूल से।
1: मुन्नू नहीं है? अरे बताया तो था कि मुन्नू पढ़ाई में बहुत कमजोर है। ऐसे कमजोर लड़कों को हमारे स्कूल की प्रिंसिपल मीनाक्षी छुट्टी के बाद रोक कर खुद पढ़ाती।
2: मास्टर का लड़का और कमजोर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। खुद मास्टर होकर भी अपने लड़के को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन तुम लड़के को घर में पढ़ाओगे कैसे? तुम्हें तो अपने सैर सपाटे से ही फुर्सत नहीं। लेकिन अब मैं देख रही हूँ
1: फिर गुस्से का दौरा पड़ा मिलने की ना। देखो जल्दी से क्रोध हरण शलाका मुंह में रखो वरना अलग हो जाएगा।
2: अरे हाँ मुझे तो क्रोध नहीं करना चाहिए था। पियो ये रख ली मुंह में मैंने क्रोध हरण शलाका।
1: ठीक अब तुम इसे कभी इसे मुंह में दबाए 15 मिनट के लिए उस कमरे में जाकर बैठ जाओ। 15 मिनट के लिए जुबान को एकदम बंद रखना। कैसे चैन है। 6 बजे मैंने रमेश और उसकी पत्नी को चाय के बहाने से बुलाया था। पता नहीं वो अब तक क्यों नहीं आए। सोचता हूँ अगर इस क्रोध हरण शलाका से उसका भी भला हो जाए तो क्या बुरा है। अरे शायद वो आ गए।
3: अरे आ गए रमेश।
1: नमस्ते नमस्ते। जी आपने बुलाया था।
3: कैसे नहीं
1: लीला आ रही है पीछे। लगता है आते आते रास्ते में फिर झगड़ा हुआ। हाँ मास्टर जी झगड़ा करते समय लीला घर बार कुछ नहीं करती। मैं घूम रहा हूँ।
3: जानता हूँ रमेश सब कुछ जानता हूँ। आज मैं उसे ऐसा उपदेश दूंगा उसके सामने आदर्श गृहिणी का ऐसा नमूना पेश करूंगा कि लीला एकदम प्रेममयी स्नेहमयी मधुर स्वभाव नई गृहिणी बन जाए और तुम्हारा घर बन जाएगा स्वर्ग का नमूना। और पति को पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये सब तुम्हें भी आज मुझसे सीखना होगा।
1: जरूर सीखूंगा मास्टर जी। मान लेता हूँ कि आज मैं 25 वर्ष बाद फिर आपकी क्लास में पढ़ने आया
3: आ रही है।
1: आइए आइए लीला जी मैं दरवाजे पर आपके ही स्वागत के लिए खड़ा हूँ।
2: नमस्ते मास्टर जी। मुझे पीछे छोड़कर पहले यहाँ पहुँच गए। क्या लगे मिलकर यहाँ आ सकते हैं? मुझे तो मेरे साथ आते हुए भी शर्म आने
1: लगी। शांत शांत लीला जी शांत। गणेश मास्टर जी
3: ये बहुत बुरी बात है। तुम्हें लीला जी के साथ आना चाहिए था।
1: ये ठीक है कि जीवन में मर्द बड़ा तेज चलते हैं।
2: आप तेज चलते हैं हमारे ये तो जन्म जन्म के फिसलती है। इनके साथ के बाबू अफसर बन गए और ये अभी तक
1: बाबा अपना फिसलती ही सही। मास्टर जी मेरे बचपन के गुरु हैं। इनके जाने की मेरी पत्नी होता है बाहर की जगह।
2: अच्छा तो तुम अपने मास्टर जी के सामने ये साबित करना चाहते हो कि मैं झगड़ालू हूँ लड़ा कर
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं लीला जी नहीं। आपने तो बड़ा ही मधुर और स्नेहपूर्ण स्वभाव पाया है। उस दिन मुन्नू की माँ भी आपके घर गई थी मैं तो आपकी सराहना करती नहीं।
3: मास्टर जी क्या बात है लगता है घर में जैसे न मास्टरानी जी है न मुन्नू है।
1: अभी मुन्नू की माँ 15 मिनट हो गए उसे क्रोध हरण शलाका निकाल कर बाहर के लिए आओ।
3: क्रोध हरण शलाका?
1: अरे भाई देखो रमेश आया है।
2: मेरा भाई रमेश आया है। ये तो कोई
1: भाई का नाम सुनते ही मुन्नू की माँ कैसी लगती है।
3: रमेश जी
1: तुम्हें शायद पता नहीं इनके भाई यानी कि मेरे साले का नाम थे रमेश।
3: साले का
1: वो बम्बई की एक बहुत बड़ी फर्म में काम करता है
3: जी।
1: तुम जितने नेक हो वो

0: दुष्ट है।
1: जवान समाज का बोला जी, मेरे देवता सभी के भाई का दुष्ट क्या होगा?
0: शिया लगता है क्रोध हरण शला का पूरे 15 मिनट मुंह में नहीं रही।

0: मास्टर जी, आपने ये क्या जादू किया? मुन्नू की माँ का स्वभाव तो एकदम बदल गया।
1: पहले तो ये भी नीला की तरह झगड़ालू, प्रोधिया, चिड़चिड़े स्वभाव की थी।
2: अरे भाई, ये सब इस क्रोध हरण शलाका की करामात है।
0: क्रोध हरण शलाका का नाम पिए लोहे की सलाई आपने भी अपने चेहरे में डाल रखी है।
1: मास्टर जी आखिर ये है क्या चीज?
2: अरे भाई, इससे मुझे चमत्कारी थर्मामीटर कह सकते हो।
0: थर्मामीटर?
2: देखो, आम थर्मामीटर तो केवल टेम्परेचर बताता है
0: जी,
2: परंतु ये क्रोध हरण शलाका दिमाग के टेम्परेचर को, मतलब ये कि दिमाग की गर्मी को 15 मिनट में ठंडा कर देती है।
0: यानी जितनी गर्मी है दिमाग ठंडा कर देती है।
2: ये बड़ा ही गर्मी ही क्रोध कहलाती है।
0: वाह वाह,
2: घरों में पति पत्नी की झगड़े इसी दिमागी गर्मी के कारण ही हो गए। 10-12 दिन हुए
0: जी,
2: उत्तराखंड की गुफाओं के वासी एक सिद्ध महात्मा दिल्ली आए
0: जी।
2: उनसे मेरी अचानक भेंट हो गई। उन्होंने घर ले आया। उन दिनों मुन्नू की माँ मुझसे लड़कर लेके गई हुई थी। मैंने महात्मा जी को अपना दुखड़ा सुनाया। उन्होंने मुझे 4 क्रोध हरण शलाकाएं दी।
0: ऐसा कहा
2: कि बच्चा, इनका उपयोग तुम भी करो, तुम्हारी पत्नी भी करे, घर में सदा सुख और शांति रहेगी। जिसे भी क्रोध का दौरा पड़े, वही शलाका को 15 मिनट के लिए थर्मामीटर की तरह मुंह में रख ले। क्रोध अपने आप ठंडा हो जाएगा।
0: मुन्नू की मैं जब मायके से लौटी तो मैंने उसे एक क्रोध हरण शलाका दे दी,
2: एक अपने पास रख ली
0: जी।
2: जब मुझे भी गुस्सा आता है तो मैं ये शलाका 15 मिनट के लिए मुंह में रख लेती।
0: आप भी
2: गुस्सा का दूर हो जाता है।
0: ये तो कमाल की चीज है मास्टर जी।
1: बाकी की दो शलाकाएं
2: अपने किसी परम प्रिय मित्र को देने के लिए वो दोनों ही मैंने अंदर की अलमारी में संभाल कर रखी थी।
1: तो मास्टर जी एक क्रोध हरण शलाका मुझे ले जाके दे देते थे ना।
3: मास्टर जी, दीदी ने मुझे क्रोध हरण शलाका का हाल सब सुना दिया है।
0: अच्छा।
3: मास्टर जी, एक शलाका मुझे भी जरूर दे दीजिए। जब गुस्सा आएगा तो मैं 15 मिनट के लिए इसे अपने मुँह में रख लिया करूँगी।
2: लीला जी, ये शलाका का उपयोग मेरी तरह रमेश को भी करना चाहिए। घरेलू जीवन के सुख और चैन के लिए पति और पत्नी दोनों के ही दिमाग ठंडे रहने चाहिए। मैं आखिर आया तुम दोनों के लिए क्रोध हरण शलाकाएं। अरे भाई मुन्नू की माँ, ये बाकी की वो दोनों क्रोध हरण शलाकाएं अलमारी से गायब थी।
3: आप एक बार फिर ढूंढ कर देखिए, घर में रखी थी तो घर में ही रहेंगी।
2: अच्छा, अब पिछले स्टोर की अलमारी में और देख लेता हूँ।
0: मास्टर जी,
1: बेटा
0: इधर आओ।
1: अगर ये शलाका न मिली तो बहुत बुरा होगा।
3: बहुत बुरा होगा है मास्टर जी।
4: प्रिंसिपल साहब, मेरा मुन्नू क्यों रो रहा है?
5: मास्टर जी, प्रिंसिपल साहब ने आज मुझे मारा, मुर्गा बनाया और अब कान से पकड़ कर देखती हुई लाई।
4: ये कौन होती है मेरे बेटे को मारने वाली?
0: मास्टर जी, आप मुझसे क्रोध हरण शलाका ना निकालिए। अभी 15 मिनट नहीं हुए, मैं प्रिंसिपल साहब से बात करता हूँ।
4: आप मुझसे क्या बात करेंगे? कहाँ है मास्टर सिल्वी? ये शैतान लड़का पढ़ने नहीं, कमजोर नहीं, चोर भी है। मैंने विलायत से प्लैटिनम की सलाइयाँ मंगवाई थी, मुन्नू ने चुरा कर टुकड़े टुकड़े कर दी। आज 2 टुकड़े इसकी जेब में पाए गए। वो देखो उन सलाइयों का एक टुकड़ा तो मुन्नू की माँ अपने मुँह में दबाए बैठी है।
5: क्या
4: पहले मेरे लहजे का तोड़ खड़ा और अब मुझे?
1: मीनाक्षी जी, ये तो क्रोध हरण शलाका है।
2: अरे मुन्नू की माँ, अरे भाई रमेश भाई, बहुत झूठा बाकी की दो शलाका।
4: अरे सुना तुमने, तुम्हारी ये मीनाक्षी क्या कह रही है?
2: मीनाक्षी जी आई है। क्षमा कीजिए, पहले मैंने आपको देखा ही नहीं। आए घर में हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। मम्मी की मान

0: आए तो बाद में आ जाएगी, पहले ये तो सुन लो कि ये सारे घर को अपनी सलाइयों का चोट फैला रखी है।
1: सलाइयां?
0: हाँ।
1: कैसी सलाइयां?
2: मास्टर
1: कैसा चोट?
2: मैंने स्वेटर बुनने के लिए प्लैटिनम की चमचमाती सलाइयां विशेष रूप से विनय से मंगाई थी। एक दिन वो सलाइयां स्कूल में खो गई। मैंने सब जगह ढूंढा, सबसे पूछा। आपको तो याद है ना सिल्वर जी?
1: मुझे तो कुछ भी याद नहीं
2: थी। आज उन सलाइयों के दो टुकड़े मुन्नू के पास से मिले। एक टुकड़ा अभी अभी मुन्नू की माँ अपने मुंह में दबाए
1: बैठी। मीनाक्षी जी, और एक टुकड़ा अभी आपको मास्टर जी की जेब में मिलेगा।
0: तो रमेश, क्या तुम्हारा मतलब है कि मुन्नू के बापू ने वो सलाइयां चुरा कर उनकी ये क्रोधन शलाका बनाई है?
1: लगता है मन्नू के पास वही टुकड़े पाए गए हैं जो सिल्वी जी अलमारी में ढूंढ रहे
2: हैं। मेरी कीमती सलाइयों की ये दशा, मैं पुलिस में रिपोर्ट करूंगी।
0: मन्नू के बापू, तुमने चोरी की है।
2: मैंने
0: चोरी की है? चोरी करके मुझे धोखा दिया। मुझे धोखा दिया है तुमने। साधी महात्मा की देन बताकर सलाइयों के टुकड़ों से 15-15 मिनट के लिए मेरा मुंह बंद कर दिया।
2: भी बंद कर दिया।
0: बीवी के साथ कैसा
2: धोखा?
1: आज मैं मास्टर जी की सूझ बूझ का लोहा
2: मांगा।
1: मैं बताता हूँ नीला तुम्हें। एक पति अपनी बीवी की बड़झक से बहुत परेशान था। अंग्रेजी समय बीवी बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने टेम्परेचर मालूम करने के लिए थर्मामीटर दिया और कहा कि बीमार बीवी आध मिनट तक थर्मामीटर मुंह में रखे। बीवी की बड़झक से परेशान पति बोला, डॉक्टर साहब कोई ऐसा थर्मामीटर दीजिए जो कम से कम 15 मिनट तक बीवी के मुंह में रखा जाए। मास्टर जी ने खुद ही स्वेटर बुनने की सलाइयों का ऐसा थर्मामीटर बना डाला जो बीवी का मुंह 15 मिनट तक बंद रहे।
0: अच्छा, तो मेरा मुंह बंद करने के लिए ही तो धर्म चलाका का ये प्रपंच रचा गया था।
3: दीदी, मेरे इलाज के लिए मास्टर जी को धर्म चलाका की भेंट हमें भी दे रहे
1: हैं। तो मैंने
0: बापू, मेरा जी चाहता है कि यार आज तो मैं तुम्हें मार दूँ।
1: लीला, लीला हम बाल बाल बच गए। देवी का माल जब हमारे पास से भी बरामद होता तो क्या होता?
2: मास्टर जी, मैं तुम्हें क्षमा नहीं कर सकती। कल से मेरे स्कूल में ना आना। मुझे नहीं चाहिए ऐसा छोटा मास्टर।
1: भगवान, ये क्रोध हरण सलाहकार तो नौकरी हरण सलाहकार साबित हुई। तुम्हें ना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे चिरंजीत की लिखी हास्य नाटिका क्रोध हरण शलाका। निर्देशक थे दीनानाथ। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र की प्रस्तुति अभी आपने सुनी।

श्रुति, गीत आपने सुना फिल्म वॉर से, आवाजें अरिजीत सिंह और शिल्पा राव की थी। गीत के बोल कुमार के और संगीत विशाल शेखर का। आइए सुनते हैं अब ये गीत।

श्रोता ये गीत आपने सुना फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा दिया से, आवाज मित्रास के थे, गीत के बोल और संगीत मित्रास के ही थे। और ये सुनते हैं अभी गीत।

0: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम दे जाता हूँ उड़न खटोला तीन बजाती हुई आगे।
1: Shake your body, girl.

गया। रघुनाथ की कोई भी शंका अपने प्यार का बचा दो लंका, तेरे मेरे बीच में जो कोई भी आया उसको लगा दो लंका, छोड़ छाड़ के दुनियादारी तेरे बीच में पड़ गया मैं, सपनों में तो ऑलरेडी दौड़ी बोड़ी चढ़ गया मैं, मुझको दे दी लक्की लक्की बात हमारी पक्की, इतना क्या सोचे मुझे हाँ बोल के।

0: cine pra paura plachada. सब कच्चे सीमा टांग कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खल गई। विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए तो पंकज बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम।

श्रद्धा अजीत, आपने सुना फिल्म तो झूठी मैं गुक्कार से, आवाजें सुनिधि चौहान और साथियों की थी। गीत के बोल अमिताभ भट्टाचार्य के और संगीत शाश्वत सिंह का।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक शहीद।
1: बैडमिंटन में भारत की श्रेयसी वीरशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 30 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की दो दिन की यात्रा के बाद पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटो एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिंग लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपीय माउंट एवरेस्ट और इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब रुटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। द्वारा हमारे संवाददाता से।
3: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक, जन संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक

0: पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोड मैप क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रामीण विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। सुश्रुत शर्मा, आकाशवाणी द हेग, नीदरलैंड्स।
1: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में दो तिहाई से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वी डी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वी डी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पवरोटी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के दो दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। नए शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधु डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।

0: से सोचा हो।
1: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
0: टुडे वी आर सक्सेसफुली मैनेज्ड

अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरू और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरू और मुंबई के बीच

हरा झंडा दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री जयश्रीराम ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वनों की लंबे समय से लंबित मांगे अब पूरी हो रही है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच

वाहन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालनपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने कहा है कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डेमो नदी में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने यह बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डेमो नदी से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के केरल में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत

कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी विली शेट्टी ने चीन के बाओजू में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इससे सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की एन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सके। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वी ए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: गीता गीत के सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। मोहब्बत की सभा नहीं होती।
1: हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज के फनकार ये कार्यक्रम आप सुन पाएंगे बस थोड़ी ही देर में।

0: से बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कुमार साहब कहने का ख्याल से जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार हयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई के साथ एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको सुना, तो आवाज तो यही है जो चाहिए कुमार साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झंकार, खुदा खैर। तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।

1980 का दौर होगा जब बहुत चुनिंदा लोग गजलें सुना करते। जिनकी गजलें सुनी जाती वो नाम थे महीदी हसन, गुलाम अली, बेगम अख्तर। गजलों के शौकीन उर्दू भी समझते थे, या यूं कहें कि उर्दू की समझ रखने वाले ही गजल का शौक रखते थे और उनका अपना क्लास हुआ करता। मगर 1980 में गजल के क्षितिज पर एक आवाज उभरी, मार्केट में गजल का एक एल्बम आया। आहट ये वाकई में वो आहट थी जिससे क्लासेस से मासेस की ओर गजल का सफर शुरू हुआ। पंकज उदास के इस एल्बम ने संगीत के बाजार में धूम मचा दी। इस प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण है शायरी। पंकज उदास ने ऐसी गजलें चुनी जो बहुत आसानी से आम संगीत प्रेमी की समझ में आ जाए।

1980 में अहद की कामयाबी के बाद 1981 में पंकज उदास की गजलों का दूसरा एल्बम आया मुकर्रर, और फिर कामयाबी का ये सिलसिला जारी रहा। 1982 में तरन्नुम, 1983 में महफिल, 1984 में पंकज उदास लाइव इन रॉयल अल्बर्ट हॉल, 1985 में नायाब और 1986 में आफरीन। पंकज उदास की गजलें हर गली मोहल्ले, नुक्कड़ चौराहे, रेस्टोरेंट, होटलों में गूंजने लगी।

सन 1951 में गुजरात के जेतपुर गांव में जन्मे पंकज उदास के माता पिता जीतूबेन उदास और केशुभाई उदास राजकोट के निकट एक छोटे से गांव चराखड़ी के रहने वाले हैं। पंकज उदास के दोनों बड़े भाई निर्मल उदास और मनहर उदास संगीत की दुनिया में परिचित नाम हैं। पंकज का रुझान भी गायन के क्षेत्र में ही है। इसे देखते हुए ये परिवार मुंबई आ बसा। भावनगर के सर बीपीटी इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले पंकज अब मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज में पढ़ने लगे। पहले राजकोट के संगीत नाट्य अकादमी में पंकज उदास तबला बजाना सीख चुके थे। अब मुंबई में साइंस की डिग्री हासिल करने के बाद मास्टर नवीन के शिष्यत्व में उन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत का अध्ययन शुरू किया।

शुभाइन का मौका मिल चुका था। कामना इस फिल्म के लिए नक्श लालपुरी का लिखा गीत उन्होंने उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में गाया। फिल्म कुछ खास नहीं चली मगर पंकज उदास के गाए इस गाने को खूब तारीफ मिली।

इसके बाद पंकज उदास में गजल गायन की रुचि उत्पन्न हुई। उन्होंने उर्दू की तालीम ली। उसके बाद वो विदेश चले गए। कनाडा और अमेरिका में 10 महीनों तक गजलों के कार्यक्रम करते रहे और उसके बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वहां से लौटे। तब पहला एल्बम 1980 में रिलीज हुआ आहट, और फिर एक लोकप्रिय गजल गायक के रूप में प्रस्थापित होने का इतिहास हम आपको बता ही चुके हैं।

ये कहानी याद आई। हम सब जानते हैं कि पहले संगीत प्रेमियों को घर में ग्रामोफोन पर बजाकर सुनने के लिए एलपी या ईपी रिकॉर्ड्स खरीदने पड़ते थे। फिर ऑडियो कैसेट्स का जमाना आया और उसके बाद सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क। 1987 में पंकज उदास का गजलों का एल्बम शगुफ्ता पहला ऐसा एल्बम था जो कॉम्पैक्ट डिस्क के रूप में बाजार में आया। एक और उनकी गायी गजलें मशहूर तो थी ही, उनके गाये फिल्मी गीत भी लोकप्रिय होते गए। पंकज उदास का गाया एक और फिल्मी गाना 1994 में हिट हुआ। फिल्म का नाम था मोहरा।

कैंसर के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कैंसर पीड़ितों और थैलेसेमिक बच्चों की भलाई के लिए उन्होंने जो योगदान दिया तथा गजल गायन की कला को जो योगदान उन्होंने दिया, इसके लिए सन 2006 में पंकज उदास को भारत सरकार की ओर से पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा पुरस्कार एवं सम्मान की एक लंबी फहरिस्त है, जिनमें प्रमुख है 1985 में K.L. सहगल अवार्ड, 1994 में रेडियो लोटस अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी अवार्ड, 1999 में भारतीय विद्या भवन USA अवार्ड, 2001 में वोकेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड, 2003 में दादा भाई नौरोजी मिलेनियम अवार्ड और सन 2006 में कोलकाता का प्रतिष्ठित कलाकार पुरस्कार। पंकज उदास का गजल और फिल्म संगीत का ये सुरीला सफर यूं ही चलता रहेगा।

छह फनकार आज का हमारे ये कार्यक्रम केंद्रित था जाने माने पार्श्व गायक और गजल गायक पंकज उधास पर आलेख और स्वर जयंत पात्रीकर प्रस्तुति सहायिका आकांक्षा सिंह प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।

जी आकाशवाणी है। आज के रविवासी अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज के सभा में प्रस्तुत है सुख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपने बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फूट से भनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायलिन और कर्नाटक शैली के वैद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मुंबई कुर्डीकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह

0: एक है राग चंद्र कौश, प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सुनर। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अजिया। इसी के साथ आज का रविवार स्तरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adia. With this tonight we conclude Ravi Vasariya Akhil Bharatiya Sangeet Sabha. This program was recorded in the studios of Akashwani Mumbai and this broadcast came to you from Akashwani Delhi.

0: Nimittäin aikaisen itseään tarkitaan puolen pysyvän kuvat. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोटनबर्ग में सोलन के प्रधानमंत्री उल्फ कुशलसन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, स्रोत बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच सोलन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडन समकक्ष यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लेयन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय वर्णी सम्मेलन को भी संसद से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ोतरी है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटी बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद सोनाबी आज स्वयं अपने प्रयुक्त राष्ट्र के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोटनबर्ग पहुंचे। गोटनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्म जोशी से स्वागत किया गया। गोटनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टरडैम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को बधाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी दो दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने दक्ष समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात के महत्वाकांक्षी कब्सर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके दक्ष समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों के प्रमुख टेक्स कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को दो दिन की

0: are by protein. कांग्रेस नेता वीडी सतीश के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीश को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश में एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 GW बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक बढ़िया जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोद स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलबंदी मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हिलने स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि परतमणि हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PID की पत्र जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 7 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत की सलामती वाली शक्ति ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस उपरांगित प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में सलामती को चीन के आन के युवा से सीधा जीवन में 14-21-6 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani. The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arriving at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals, and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability, and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jordan for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Kerala government led by Congress leader V.D. Satishan will be sworn in tomorrow in Tiruvananthapuram. Congress had announced Satishan as the next Chief Minister of Kerala on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than 2/3 majority in the Kerala Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah to be inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is